राग, दीपक मीन्स लैम्प, राग मीन्स मेलेडी. सो इन्वेंटेड अ राग कॉल्ड दीपक राग. इन द इवनिंग लाइक वी आर सिटिंग हियर, अ लैम्प वुड बी केप्ट लाइक अ कैंडल एंड इट इज बिलीव व्हेन ही इज टू सिंग दीपक राग स्लोली दैट लैम्प वुड बर्न बाय इटसेल्फ विद अ वाइब्रेशन. One of my dreams is to reach at least a little close to what Tansen was. So this Rag Darbari was created by Tansen.